अरे बच्चे तो खुदे के हुए खेलू रहा कुछ किचे में खेल बिंदा हरे लो मेरे शवा दिमाग के।